की तन्हाई में टूट सा गया हूं। मेरे आंसू तेरे सामने गिर रहे हैं, मेरी खामोशी भी तू सुन रहा है ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हबीब के सदके मुझे भी पनाह दे दे।

से अपने ही वजूद से मैं भागता रहा मगर तू हर जगह था। आज तेरे दर पे खड़ा हूं खाली हाथ मगर टूटा हुआ दिल लेकर।

0: की भी समझ जाए। बस एक माफी, बस एक माफी,
1: बस एक माफी।
0: या अल्लाह, मुझसे और नहीं होता, मुझे अपनी रहमत में छुपा ले, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ मत दे।

बेशक खुदा मुझको प्यारा मदीना दिखा, अगर आप तलब कर रहे हैं मत की मदीने जाने की, दुआ करे, नियत करे और हौसला रखे उस रब पर, भरोसा रखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस दर पे जल्द पहुंचा दे इंशाल्लाह। तो ये था हज के सफ़र के ऊपर। और कहते हैं आज मदर्स डे है, लेकिन मेरी राय से सब दिन मदर्स डे होती हैं, सब दिन माँ बाप के दिन होते हैं। ज़िंदगी का हर एक दिन माँ बाप का दिन होता है। हम माँ बाप की कुर्बानियों का कोई मोल बदल नहीं है, हम उसका सिला कभी भी नहीं दे सकते। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। केप टाउन गेट रेडी फॉर अ मैजिकल सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक एंड फ्रेंडशिप ऑन सैटरडे द 13th ऑफ जून एट 7:30 PM एट द आइकॉनिक बैक्स्टर कॉन्सर्ट हॉल। अंजुमारा प्रेजेंस महफिल यारा अ सोलफुल म्यूजिक गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ अ 7-piece ensemble of brilliant musicians from India led by the sensational Gaurav Vaswani on keyboard. Supporting Anjumara is a cast comprising Cape Town's very own popular artists. It's an evening of rich Eastern melodies, timeless classics and unforgettable energy. And keep this magic alive on Monday the 15th of June. Dairaiz kijiye Monday 15 June 7:30 PM at Islami Auditorium with Ruhaniyat Echoes of Love, a beautiful night of ghazal, Sufi and romantic songs. Featuring Anjum Khana, Anjumara Khan, Zarina Sable aur Hamare Apne Shamim Brown. And this proceeds will be going to Gift of Givers. Bookings for Mehfil Yara are through web tickets. And for Ruhaniyat, call 084-368-0080. And don't miss these extraordinary musical experiences where hearts connect and melodies live. Two nights, two incredible shows. One unforgettable musical journey. मिस नहीं कीजिएगा, डायराइज कीजिए 13 जून और 15 जून। ये हमारी अपनी प्यारी अंजुम आरा खान शो कर रही हैं, तो इनको सपोर्ट करें अपने दिल से। तो चले माँ की तरफ बढ़ते हैं। माँ कितनी अच्छी होती है, बाज़ वक़्त हम ये नहीं देखते कि माँ किसी घर के कोने में है और वो क्या कर रही है। वो हर वक्त अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहती। तो ये पहला कलाम माँ के ऊपर तो कितनी अच्छी है।

जी बेशक बहुत ही खूबसूरत गाना है, मेरा फेवरेट भी है. और मैसेज आया है हमारी प्यारी जुबेदा आपा की तरफ से, जो कहती है अस्सलाम वालेकुम, हो पापा एंड एवरीबॉडी इज वेल इन द स्टूडियो. दिस स्पेशल मैसेज इज फॉर बिलवड मदर आयशा दाते, विशिंग अ हैप्पी मदर्स डे. मे अल्लाह ब्लेस मामा एंड ग्रांट अ शिफा इंशाल्लाह. वी लव मामा सो मच. एंड दिस कम्स फ्रॉम जुबेदा इज़ाक एंड नसीमा मुअज्जम Ziyad and Munira, Mohammed Zidan, Huzair and Mustafa, and of course mama ke jo dusre bacche bhi hain unki taraf se bhi Allah Taala mama ko lambi umar de, sehat de, aur unka saaya hamesha unke bachchon par rakhe. To ye agla kalam maa ki dua inke liye.

हर मोहब्बत का एक मतलब है, लेकिन एक जात ऐसी है जिसकी मोहब्बत लामहदूद और बेमतलब है। वो जात है मां, और उसके लबों से निकली हुई फरियाद उसकी दुआ, वो दुआ जो फरिश्तों के परों पर लिखकर सीधा अर्श इलाही तक जाती है, वो दुआ जिसे रब कभी रत्न

बेशक हर हिला दे और फर्श भी हिला दे. मैं शब्बीर जेकब साहब को ये गाने की मतलब समझा रही तो हम दोनों के आंख में आंसू आ गए. ये अजमत ही वैसी है जो अल्लाह ने हर

बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत कलाम और ये काफ़ी लोगों ने इंजॉय किया। मोहम्मद आलम साहब इलाही कह रहे हैं कि ये गाना मैं उनके वालिदा के लिए डेडिकेट करूँ, एंड ही सेज दैट हिज मदर इंस्पायर्स हिम विद अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट, एंड ही सेज ही सेलिब्रेट्स मदर्स डे एवरी डे। बेशक इलाही साहब, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और कहती रहूँगी कि माँ बाप के लिए हर दिन होना चाहिए, ना कि साल में एक बार हम उनके लिए फूल ले जाएं या उन्हें बाहर ले जाएं, हर एक दिन उनके लिए वक्त निकालें, उनको प्यार दें, उन्हें वक्त दें। और ये और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बर्थडे मैसेज है हमारी प्यारी सी छोटी सी अनीसा सोलकर के लिए, जिनकी कल सालगिरह थी। अनीसा, स्टे द अमेजिंग पर्सन यू आर, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपका साया हमेशा आपके बच्चों पर रखे और आपके अक्सा और इस्माइल ये दोनों बच्चे के ऊपर आपका साया रहे, आपको सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ताला दे और स्टे द अमेजिंग लविंग स्वीट पर्सन यू आर। तो अगला कलाम भी हमने लिया है माँ के ऊपर और ये हम डेडिकेट कर रहे हैं मोहम्मद आलम साहब की तरफ से अपनी अम्मी हलीमा इलाही के लिए और मोहम्मद रजा साहब की तरफ से उनकी वालिदा सकीना के लिए और रशीदा मोज़र की तरफ से भी उनकी वालिदा के लिए और रिहाना फिरफिरे की तरफ से भी उनकी वालिदा के लिए।

जी हाँ, चढ़ता सूरज ढल जाएगा और हमें जाना ही है इस दुनिया से, पता नहीं कब। अभी रात के तकरीबन 10:45 होने आए हैं और प्रोग्राम की समाप्ति का वक्त हो चुका। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे टेक्नीशियन जो बहुत मेहनत करते हैं, एंड ही इज़ फैंटास्टिक इन व्हाट ही डज, शफी जेकब साहब, और वो काफ़ी दूर रहते हैं, तो दुआ करें ये घर खैरियत से पहुँचे। और आप हमारे सुनने वाले, आपकी दुआएं और आपकी हौसला अफजाई काबिल तारीफ है। दुआ करते रहें हमारे लिए कि हम ये प्रोग्राम करते रहें और आपको पसंद आता रहे। इंशाल्लाह अगर इसके बाद आप सुनेंगे एक और गज़ल सेगमेंट में हमारी एक गज़ल, दर्द तुम ना समझोगे, और फिर हाजी तस्लीम आरिफ की आवाज़ में होगा वाक़िया हज़रत अली का, और फिर मदीने जाने वालों इस्माइल ताज साहब की आवाज़ में, और फिर सलामी या नबी सलाम अलैकुम। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह खैर।

पनाह है, जब कोई रोकर सलाम पढ़ता है तो खुद सरकारे दो आलम उसे जवाब देते हैं, और जब मदीने की गलियों में कोई या नबी पुकारता है तो हवाएं भी ठहर कर उसका सलाम चूमती हैं।